याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षां पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसव मनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා.

0: अपविश्वासक भी रहस्य प्रकाश करम।
1: स्वामी वंश्य कुतु सेक, स्वामी वंश्य उतानु सेक, स्वामिनी वंश्य नवत वडिन सेक।
0: एहिन प्यानी उन्वांस्य के मरणयात उत्तान्यात सीपत कर्मिन जीवन दायक फूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तपयुबट पुद करम। ओ बहम सिटमिन ओबट सेवे खरानट अप सुदुसान वाचिन सल की मगन अपयुबट तुति पुदमु। ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයටත් ශ්‍රී රුධිරයටත් සහභාගී වන අප සැම ශුද්ධාත්මයන් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස අපි අවනතව ආයද සිටිමු ස්වාමී।